0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3499, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट्स से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: जी लिस्टनर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जनाब मोहम्मद अली दुरानी, और आज जो तकरीब थी जिसमें डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान जनाब तारिक इमाम के हवाले जो सीडी गई थी, जो लॉन्च की गई सीडी जिसमें इकबाल का कलाम है, इसका टाइटल अपना मुकाम पैदा कर, इसके हवाले से हम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
3: वालेकुम सलाम।
2: जी सर, इस सीडी के हवाले से और आज जो तकरीब थी, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
3: इकबाल डे के रेफरेंस से आज सीडी जारी किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जो कलाम है उसको नौजवानों तक, इकबाल की सोच को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है वो बहुत अरसे बाद कलाम इकबाल को दोबारा जो है एक नए के साथ जो है पेश किया गया है, और एक नए अपोजिशन के साथ पेश किया गया है। मैं समझता हूँ ये एक डेवलपमेंट है, इंशाल्लाह ये काफी जारी रहे।
2: हम सर से उनका पैगाम लेंगे हजरत अल्लामा इकबाल का जो में पैदाइश है उस हवाले से। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं समझता हूँ कि जी अहमियत जो है वो इस जाहिर होती है कि शख्सियत का योम

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो। You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुज़ाफ़ात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
12: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
13: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
12: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
13: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
12: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
12: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment?
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: करम तेरा के बेजौहर नहीं मैं, गुलाम तोरल संजर नहीं मैं, जहां बीनी मेरी फितरत है लेकिन किसी जमशेद का सागर नहीं मैं।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
11: ओपन 7 days 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
10: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो। You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
15: Nazar Allah pe rakhta hai musalman ghuyur, maut kya shay hai faqat aalam-e-mani ka safar, in shaheedon ki diyat ahle kaleesa se na mang, qadr o qeemat mein hai khoon jin ka haram se badhkar, ah ae mard-e-musalman tujhe kya yaad nahi, harf-e-la tad'u ma Allah.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
3: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
3: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
3: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
11: देख आकर कूचाए चाके गिरेबा में कभी, कैस तू लैला भी तू, सहरा भी तू, महमिल भी तू।

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
16: रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाज और रोज़ा और कुर्बानी और हज, ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3499, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: And the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95VR, 01274491442,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स, आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
8: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
9: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
10: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
11: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
1: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
0: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
1: बालियां अंगूठियां और हार,
0: जो दुल्हन करे सिंगार,
1: आज ही मामू काके की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
1: आपकी शान
0: हमारी आन,
1: क्वालिटी की पहचान,
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
1: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
1: सोफी ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
0: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
0: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
0: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
0: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
11: दुबई ज्वेलर्स
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
13: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal...

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे।

0: बालियां, अंगूठियां और हार
1: जो दुल्हन करे सिंगार।
0: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
0: आपकी शान
1: हमारी आन,
0: क्वालिटी की पहचान।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffert Lane ब्रेडफोर्ड, PD95ER 01274491442।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
0: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
0: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
6: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
8: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
9: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
10: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
6: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
6: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
8: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
6: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
8: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए।
3: You're listening to Bradford Asian Radio,
4: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
11: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड 3

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स,
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grant Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 7132306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 7132306677 पर कॉल कीजिए। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online।

आंखों में आंसू लेकर और कहा था, ए रब अगर तू सुन रहा है तो मुझे वो दे दे जो मेरी रूह को सुकून दे। और फिर तू आया

दिन जब तूने मुड़कर देखा भी नहीं, जैसे मेरी पूरी दुनिया रुक गई, मेरे लफ्ज वहीं रह गए,

जी बिल्कुल मज़ो सामीन इकराम, ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM की ये सुबह 9 का आगाज़ है जी आपके साथ। हमारी वेबसाइट bradfordationradio.co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। यकीन करें बिल्कुल भी मकसद नहीं है मेरा कि इतने अफसरदा से सॉन्ग जो हैं वो सुने या सुनाए जाएं, लेकिन यकीन करें कि खुशी का एहसास जो होता है ना, ऐसे ही जब कहीं से दिल टूट सा जाता है तो फिर आने वाली खुशी जो है उसका बहुत ही खूबसूरती से इस्तकबाल किया जाता है। अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ नसीब करे, आमीन सुम आमीन। बस कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लोगों से वास्ता और सामना जिसे कहते हैं पड़ ही जाता है, तो बस फिर कभी कभी ये एहसास भी साथ चलता है। एनीवे हम आपकी जो दिन भर की थकान है उसको मद्देनज़र रखते हुए अब बहुत ही खूबसूरत से नगमा, फिर कभी कभी ये एहसास भी साथ चलता है। एनीवे हम आपकी जो दिन भर की थकान है

0: हैं कि आप जहाँ कहीं भी हैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से अपने अपने कामों में मगन होने के साथ साथ हमारे प्रोग्राम को हमेशा की तरह सुन रहे हैं। फीडबैक का आपका इंतज़ार रहेगा और आपकी चॉइस, आपकी आरा और कोई भी आप हमें अपनी जो जिसे कहते हैं भेजते हैं चॉइस, तो उसको मद्देनज़र रखा जाएगा। खूबसूरत से सॉन्ग्स आपको जो भी पसंद है हमें फरमाइश करें, आपकी फरमाइश हम हमेशा की तरह बजा लाएंगे। इस वक्त इंतज़ार है एक छोटी सी ब्रेक का और आफ्टर द ब्रेक आपके साथ हम प्रोग्राम जो है दिलकश अंदाज के साथ करते हैं हमेशा की तरह। जी बिल्कुल, अभी कुछ ही लम्हों में हमारी ब्रेक का टाइम है। आफ्टर द ब्रेक आपसे मिलते हैं जी एक खूबसूरत से अंदाज के साथ। जी बिल्कुल जी, हमारा ये जो होता है लम्हात ब्रेक के, ये बड़े वो जिसे कहते हैं इंतज़ार पर मबनी होते हैं, क्योंकि ये ब्रेक बहुत ज़रूरी होती है। जितने भी हमारे बिजनेसेस हमसे रिलेटेड हैं वो उनको भी इसका इंतज़ार रहता है। ब्रेक से पहले छोटी सी बात, कहीं मत जाइएगा।
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95BR, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश। मैनिंगम

0: सुपर स्टोर
1: मनमन सुपर स्टोर
2: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
0: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
0: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 14:13 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
6: जी बिल्कुल ये ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 14:13 AM है हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 सुबह का आगाज सुबह 9 में और इस वक्त सबका ख्याल है सब अपने कामों में भी बिजी हैं बहुत ज़्यादा दिन भर की एक कोशिशें काविशें होती हैं और एक दिन का पूरा स्केड्यूल जिसे कहते हैं हमारे सामने होता है उसको निभाना है काम पे जो मेरे जितने भी मौजूदा इकराम हैं इस वक्त प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं बिल्कुल मैं आपकी पसंद जो है उसको भी मद्देनज़र रखूंगी और बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगी और कोशिश है मेरी कि अभी ताज़ा दम होने के लिए एक खूबसूरत सा नगमा सुनते हैं यकीन करें वाकई खूबसूरत है और आप की तबीयत शाश बशाश रखनी है बिल्कुल ताकि पूरा प्रोग्राम जो है आपके साथ एक बजे तक हमारा और आपका साथ रहे आपने कहीं इधर उधर नहीं जाना प्रोग्राम को हमेशा की तरह सुनते हुए मुझे फीडबैक साथ साथ कॉल्स आती हैं वो ज़रूर करनी है और आइए खूबसूरत सा नगमा वाकई खूबसूरत सा वो थोड़ा सा अगर पहले वाला मैं नगमा ना सुनाती मेरा मतलब है दिलकश सा कलाम तो वो फिर हमें जो खूबसूरत और खुशी के साथ साथ होते हैं ना फिर उनकी कदर जो है ना वो इतनी नहीं होती तो इसलिए खुशी के एहसास की कदर अब महसूस होगी जी सुनते हैं आइए एक कलाम सॉन्ग

जी बिल्कुल मज़े सामीन इकराम, दर्द की शिद्दत हो या खुशी का एहसास, अपनी नियतों को दुरुस्त रखना है और अपने जज्बात को काबू में रखना है। बिल्कुल, नियत साफ हो तो मंजिल बहुत करीब आ जाती है। यही है हमारा आज का टॉपिक कि हमारी ट्रू इंटेंशंस जो हैं वो हमें अपनी कामयाबियों के रास्तों की तरफ रवा दवा कर देती हैं। जी बिल्कुल मज़ा सामीन इकराम, विद ट्रू इंटेंशंस आपसे इस वक्त मुखातिब है जी आपकी होस्ट, आपकी मेज़बान, आपकी प्रेजेंटर आशा अख्तर, प्रोफेशन रेडियो 1413 AM पर। खूबसूरत सा हमारा ये चैनल जो है, आपने कहीं इधर उधर नहीं जाना, आशा अख्तर के संग ये पूरा प्रोग्राम एक बजे तक आपने समाप्त फरमाना है। प्रोग्राम में आप भी शिरकत कर सकते हैं हमारे साथ जी। हमारा स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 मिलाकर कोई भी फरमाइश करें, और हमेशा की तरह बहुत दफ़ा आप कह देते हैं कि जी आप अपनी पसंद का कोई खूबसूरत सा नगमा, कोई गीत लगा दें, तो वो फिर मैं इसी तरह से प्रोग्राम जो है आगे बढ़ाती चली जाती हूँ, तो खैर आपकी मौजूदगी का एहसास भी हमें रहता है, होता है इंतज़ार जी आपकी कॉल्स का। हमारी वेबसाइट preferationradio.co.uk, जी बात हो रही है इंटेंशंस की कि हमें अपनी नियतें जो है वो खालस रखनी है। यकीन करें बहुत ही खूबसूरत सा ये टॉपिक भी है, और मैं कहती हूँ हम जो भी रोज़मर्रा डेली रूटीन लाइफ के जो मैटर्स जो हैं वो कर रहे हैं, हमारा मज़हब से ताल्लुक है, हमारा इस वक्त ज्ञान की तरफ जो है ध्यान है, तो ये सारी जब इंटेंशंस ट्रू होती हैं तो हम जो भी अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं ट्रू इंटेंशंस के साथ अल्लाह ताला से मांगते तो ज़रूर मिलता है जी, क्यों नहीं। बहुत ही एक खूबसूरत सी, मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी कह लें, एक बात कह लें, बहुत ही खूबसूरत सी है, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मौजूद ख़वातीन के हवाले से है खूबसूरत सी बात ये कि एक खातून जो थी वो टिल पे अपने फ्राइज़ अंजाम दे रही थी और बहुत रश था सुपर स्टोर में। लोग, आपको पता है सुपर स्टोर्स में जब रश होता है तो हर कोई जल्दी में, क्यों एक लंबी सी बनी हुई है, और वो खातून जल्दी जल्दी से टिल के ऊपर जो है सामान को आगे आगे गुजार रही है, और ऑब्वियसली काम का प्रेशर होता है और अपनी ड्यूटी जो होती है उसको अंजाम देना होता है, मुकर्रा जो होते हैं उनमें अपनी एफिशिएंसी दिखानी होती है कि वी आर द रियली बेस्ट वर्कर्स, तो लगी हुई है खातून। और इतने में एक खातून आती हैं अपना निकाब और बुरका संभालते हुए जो कि इर्द गिर्द ऐसे फैला हुआ है, और वो यूं लग रहा है कि जैसे उसने बुरके को नहीं संभाला बल्कि बुरके ने उसे संभाला हुआ, कुछ ऐसा ही मामला था कि वो उसको थोड़ी दिक्कत पेश आ रही थी अपने नकाब को, अपने जो कुछ अबाया पहना हुआ था कि उसको संभालने में, लेकिन वो खातून फिर भी हिम्मत नहीं आ रही थी और अपना सामान जो है टिल पे रखने में थोड़ी सी मज़ाहमत कर रही थी कि, लेकिन इतने में वो जो टिल पे बैठी हुई खातून थी तो उसने बड़े गुस्से से और हकारत से कहा कि तुम लोग जो होती हो यूरोपियन कंट्रीज़ में, देखिए ये मैंने जैसे, मेरा कोई भी मकसद किसी को भी हर्ट करने का नहीं, मैं बिल्कुल स्टोरी आपको एक जो है एक पॉइंट की तरफ हमने जाना है, कंक्लूजन की तरफ, और देखना है कि क्या ये खूबसूरत सी बात है, राइट। तो तुम लोग यूरोपियन कंट्री में आ जाती हो और तुम्हें पता नहीं होता है कि तुमने जो है तुम हमारा भी वकार खराब कर देती हो और पर्दे में रहती हो, दिस एंड दैट, तो क्या तुम, अगर तुमने ऐसे कंट्रीज में रहना होता तो तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे लिबास जो है ज़रा तहजीबदार, जिसे वो तहजीबदार कह रही थी कि
कुछ देखिए अब जैसे मैंने पढ़ा है तो मतलब इंग्लिश माहौल में हम जैसे मैं यहाँ पे एक यूरोपियन कंट्रीज में रहते तो तुम लोग जो हो बड़ा अपने मजहब को प्रचार करते हो और इनको अपने ममालिक में छोड़ के आया करो और आपको पता नहीं है कि यहाँ की लाइफ जो है कितनी बिजी तरीन है और यहाँ पे इस तरह के जो है लवाजमात उनको घरों में छोड़ के आना पड़ता है। तो खैर वो बड़ी बरहम हो रही है और अपनी बात पे बात जब किए जा रही है तो उस खातून ने अपने चेहरे से जरा नकाब उठाया और जरा दिखाया उसने जब अपना चेहरा तो वो खातून लरस गई और वहीं पे उसको ब्रेक लग गई है, चुप हो गई, क्योंकि वो एक इंतहाई खूबसूरत हस्पानवी उसके अंदर खातून थी और उसने जब फिर इंग्लिश में प्योर, क्योंकि शी वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश एज वेल, क्योंकि टिल पे वो कह रही थी कि मैं जो इंग्लिश बोल रही हूँ, मैं यहाँ का इंग्लिश, मतलब ये एनवायरमेंट दिस एंड दैट, तुम ये लोग कहां से अपना कल्चर उठा के ले आते। उसने जब फिर प्योर इंग्लिश में जो अपनी सारी बात बताई और उसने खातून ने कहा कि तुमने मुझे क्या समझा कि मैं यहां पे दिखावा करने के लिए ये सारा कुछ, और ये जो है द डेप्थ एंड ब्यूटी ऑफ इस्लाम ये तुम लोगों के लिए है, हम लोग जो है अल्लाह ताला जिसे भी हिदायत के ऊपर लेके आए, तो तुमने मेरा मजाक उड़ाया और ये लिबास जो है जितना मेरे लिए कंफर्टेबल और इजी है कि तुम्हें इसकी वकार और अहमियत का क्या पता, और ये सिर्फ तुम लोगों के लिए मुख्तस कर दिया गया है, क्या हम लोग ये नहीं पहन। तो वो शर्मिंदगी से नदामत से बैठी हुई, सॉरी मैम, वो यू मीन बाय दिस कि क्या तुम्हें इस चीज से गर्ज है कि कोई क्या लिबास पहनता है, वो किस हुलिये में है, कैसे है, तुम अपने फर्ज फर, और तुम यहां पे लेक्चर किस सिलसिले में मुझे दे रही हो। वो इतनी शर्मिंदा और फिर ताइब भी हुई और उससे सॉरी बोल रही है कि जी वो कह रही कि तुम्हें कोई राइट नहीं है किसी के रिलीजन को कुछ कहना, किसी के कल्चर को कुछ कहना, तुम लोग यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हो, बस ड्यूटी दो, ड्यूटी इज ड्यूटी। तो वो कह रही है कि मैं जब मैंने इस चीज को अपनाया तो मैंने फुली अपनाया कि मैं मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैंने अपनी खुशी से, मैंने पता नहीं कितनी डीप डाउन ये इसकी डेप्थ में मैं गई हूँ इन चीज़ों की, और जो कुछ मैंने इस्लाम के बारे में मैं बहुत देर से सर्च कर रही थी, फिर मैंने इतना अपने आप को कंफर्टेबल फील किया इसमें, मैं इतना सुकून महसूस करती हूँ, और तुम लोग जो होते हो ना फिर ऐसे दिल आजारी करके दूसरों को भी इधर उधर राह रास्त से भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो। एनीवे वो कह रही है कि वो जो खातून थी वो कह रही है कि मेरी खूबसूरती जो है मुझे पता है कि मैंने किसके लिए सेव करके रखी, मैं एक अमानत किसकी हूं अपने रब की, और ये सारा फिर जब उसने बताया कि, और फिर वो इतनी शर्मिंदा हुई कि हम लोगों को कोई भी किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई हक नहीं होता। बड़ा खूबसूरत मुझे वाकया लगा और मैंने सोचा कि मैं अपने मौजूदा सामईन इकराम के साथ ये शेयर करती हूं, और चूंकि हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं हमें सबके साथ जो है बहुत हुस्न सलूक के साथ पेश आना है। ये एक बहुत ही मैं कहती हूँ कि सबक आमोज एक वाकया था जिसे मैंने सोचा कि मैं ज़रूर शेयर करूँ, और वो हस्पानवी खातून के जिसके अंदर इतनी खूबसूरतियाँ, उसकी ज़ाहर बातन जो खूबसूरतियों से भरा हुआ, और कैसे उसने जो है सबको एक तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम कर दिया और सबकी तरफ से वो बोली, और मुझे बहुत अच्छा लगा जी। हम सब ने सोचना है अपना अपना कैरेक्टर जो है रोल प्ले किधर करना है। अब बात फिर जो है फिर मैं ज़्यादा मजीद तवील नहीं करना चाहती, बस यही है कि जहां रहें बस खुश रहें, अपनी इंटेंशन ट्रू रखें और नियत खालिस हो तो अल्लाह ताला सब कुछ अता कर देता है। जी बिल्कुल, आइए चलिए एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं, थोड़ी सी तबीयत जो है वो बहाल हो, और दिन भर की मशक्कत भी होती है, काम काज भी होता है, उसको भी साथ साथ करना होता है, सारे मराहल जिंदगी के साथ साथ होते हैं जी।

0: जी मज़े सामीन इकराम, आप स्मार्ट फरमा रहे हैं ब्रॉडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 एएम की खूबसूरत नशियात अपनी प्रेजेंटर आयशा अख्तर के संग। हमारी वेबसाइट ब्रॉडफोर्ड एशियन रेडियो .co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। बिल्कुल ब्रेक पे जाने से पहले आपके साथ गुफ्तगू हो रही है। वो कहते हैं कि ट्रू इंटेंशन खलूस नीयत, खालिस नीयत जो है खोटी किस्मत को भी खरी कर देता है, खरी कर देती है इंटेंशन वो जो दिल से होती है। और बहुत से वो कहते हैं ऐसे लोगों को राज करते देखा है कि जिनकी इंटेंशंस ट्रू होती हैं, जिनको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए खालिस नीयत के साथ साथ उनके इरादे पुख्ता और मजबूत होते, सबसे पहले अल्लाह पर उनका ईमान और यकीन कामिल होता है। यही जो ईमान की ताजगी है ये खलूस नीयत से जुड़ी होती है। और बहुत से ऐसे जिनके पास बहुत पैसा लेकिन उनकी नाकदरी होते हुए देखी मुआशरे में, ये चीज़ें जो होती हैं हमारे इर्द गिर्द माहौल में होती हैं, हमसे जुड़ी होती हैं। हम बाज़ुकात नॉलेज को और इल्म को बड़ी बड़ी किताबों में ढूंढ रहे होते हैं, बड़े बड़े अफसरान से हमारा रابطہ वास्ता होता है और बड़ा मुशाहिदात होते हैं, बहुत हम बड़ी से बड़ी सर्च की तरफ उनकी तलाश में लगे हुए थे। यकीन करें कि ज़िंदगी के बहुत बहुत बड़े राज जो होते हैं ना, वो रोज़मर्रा रूटीन लाइफ में हमें नज़र आ रहे होते हैं। बात ये है, अपने अपने ज़र्फ की बात है, अपनी अपनी नीयतों की बात है। इश्क की चोट हर एक पे पड़ती है यकसां, ज़र्फ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। बिल्कुल, जितना जिसमें ज़र्फ है उसको ब्रोएकार लाते हैं जी। ये ज़िंदगी के जो डेली रूटीन मैटर्स होते हैं, हमारा राबता वास्ता एक दूसरे के साथ होता है, घर से शुरू हो के फैमिली के साथ और फिर बाहर और फिर मुल्कों दर मुल्कों। लेकिन आपने एक बात ज़रूर नोट की होगी, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हम अपनी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। किस लिहाज से, कैसे, क्यों, ये सब आपने भी इस बारे में ज़रूर सोचना है और देखना है कि हमें डिग्निटी, अपना वक़ार जो है बहुत से मकामात पर खुद लेना होता है। वो कैसे, नीयत खालस रखें, नीयत ट्रू रखें तो मंजिल मिल ही जाती है जी। बहुत कुछ लगा होता है इंसानों के साथ, बहुत कुछ। वो कहते हैं ना कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ज़िंदगी की ये सच्चाइयाँ और गहराइयाँ जो हैं इंसान के मरातब भी तय करती हैं, मरातब भी मेरा मतलब है बनाती है, किस मरतबे पे कौन फाइज है, कहाँ जाता है। जलसी को छोड़ें, अपने मकासद पे विद ट्रू इंटेंशंस नज़र रखें, फिर जब हमारी नीयत खालिस होती है अल्लाह ताला ज़रूर हमारा साथ देता है जी। बिल्कुल मज़े सामईन इकराम, छोटी सी ब्रेक, after the break up se milte
1: 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
3: You're listening to Bradford Asian Radio
1: 1413 AM and online.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: And the winner is... Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
7: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
9: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
10: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
11: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
10: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
11: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
10: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
11: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
12: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
11: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
10: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford, Severn, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: जी बिल्कुल बिल्कुल मज़े सामने इकराम, ये ब्रेडफोर्डेशन रेडियो 1413 AM की नशियात जारी और सारी है। आपके संग संग हम सफ़र कर रहे हैं खूबसूरतियों का, रानाइयों का, कहीं मत हिलिएगा। हमारी वेबसाइट bradfordationradio.co.uk से ज़रूर इस्तेफादा हासिल कीजिएगा और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 की रेपिटेशन का मतलब ये है आप फ़ोन उठाएं, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हों, अपनी खूबसूरत सी फरमाइश का इजहार करें और अदरवाइज अगर आप मुत्तफिक हैं कि आपके लिए बहुत से खूबसूरत नगमात का एहतमाम कर रही हैं आपकी प्रेजेंटर ऑलरेडी, तो इस ओके चलें, आप हमारी पसंद से मुत्तफिक हो जाएं और एक खूबसूरत सा नगमा जो है आइए समात फरमाते हैं। आई होप यू विल इंजॉय दिस सॉन्ग।

जी सच्चियां मोहब्बतां, जी मोहब्बतां सच्चियां। वैसे सच्चे हर मामले में ही रहना चाहिए, हर जगह पे सच को नहीं छोड़ना चाहिए, तो मोहब्बत खुद ब खुद सच्ची हो ही जाती है। और वाकई सच्ची और ट्रू मोहब्बत मिल जाना जिंदगी की कामयाबियों में से बड़ी, बहुत बड़ी कामयाबी है। वैसे आपस की बात है कि ये वाला जो टॉपिक है ना, कि सच्चियां मोहब्बतों पे आके अगर हम ख्वातीनों हजरात जिस किसी से भी बोलेंगे पूछेंगे ना, वो फोलने वाला हिसाब हो जाता है, किसी को टटोलेंगे ना तो वो सब कहेंगे जो खामोश है वो ही खुश है। तो बस ये मत पूछे, ये टॉपिक जो है ना, फिर बड़ा थोड़ा सा वो स्किल भी हो जाएगा और जू मानी भी हो जाएगा। छोड़िए भाई, इतना ही काफी है कि रोजमर्रा जीने के लिए अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो ये भी बहुत कामयाबी होती है। बस एक दूसरे की तबीयत को समझना, ख्याल रखना और माहौल को खराब नहीं होने देना, ये भी बहुत बड़ा एक आर्ट होता है, बड़े आर्ट से गुजरना पड़ता है। जी बिल्कुल। खैर, अगर हम इसको इस सेंस में लें कि ये जिंदगी के स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने अपनी जिंदगी का सफर तय करना है, तो ऑनेस्टली बहुत खूबसूरत जर्नी रहता है जिंदगी का। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खूबसूरत अपनी जिंदगियों का पैकेज और जर्नी अता फरमाए, आमीन। क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, इसको जिए भरपूर तरीके से, दुआएं करते हुए कि अल्लाह ताला भरपूर तरीके से हमें अपनी जिंदगियां जीने की तौफीक अता फरमाए। यकीन करें कि जिंदगी, वैसे मेरी टीचर्स भी अक्सर कहा करती थी, कभी कभी जरूरी तो नहीं, मैं कहती थी कि जरूरी तो नहीं कि भाई हर रोज आप लोग मुझसे कहते हो कि भाई आपके ग्रुप में बस मैं बहुत बोलूं, नहीं भाई आज मैंने क्वाइट रहना है। तो हमारी उस्ताद मोहतरम की, हमारी टीचर की नज़र पड़ती तो कहती भाई देख के चेहरे की तरफ, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते। अच्छा जी चलें ठीक है। खैर, ये छोटे मोटे चुटकुले जो होते हैं हमारे प्रोग्राम को भी अच्छा बनाते हैं, और आपकी तवज्जो समेटने के लिए भी कुछ ऐसी खूबसूरत सी बातों का सहारा भी लेना पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत सी बात भी मेरे पास है, मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक दफ़ा आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल पाक हो रही है और वहाँ पे एक नॉन बिलीवर भी बैठा है, तो वॉच कर रहा है, देख रहा है सारी सिचुएशन को। तो एक सहाबी आए बड़े परेशान और फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बच्चा 3 दिन से गुम है, मैं बहुत परेशान हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं एक बाप कैसे परेशान होता है, तो मैं इतना परेशान हूँ। तो जब ये अभी वो बात कर रहे हैं तो दूसरे सहाबी बोले कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस शख्स के बच्चे को फलां जगह पे, फलां पार्क में या फलां जगह पे किसी दूसरे बच्चों के ग्रुप में खेलते हुए देखा है। तो वो सहाबी तो बड़े खुश हुए, कहते अच्छा अभी पूरी बात ख़त्म भी नहीं हुई तो भागने लगे हैं, मुझे बताओ वो उस जगह का पता बताओ तो मैं जाके अपने बच्चे को जो है वो लेके आऊं। तो ऑब्वियसली 3 दिन के बाद की इतनी खुशी की उसे जो खबर मिली है, तो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाऊं, तो पूछा कि तुम्हें बहुत खुशी है अपने बच्चे के मिलने की? जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुशी है, लबा कभी वेशी माँ फरमाए बयान करने में, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। तो अच्छा तो तुम जब उसे मिलोगे तो क्या करोगे? तो मैं तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ज़ोर से खुशी से वो जैसे कहते हैं ना जप्पी डालूंगा, उसे गले मिलूंगा, उसको मैं तो बहुत प्यार करूंगा अपने बच्चे को, 3 दिन के बाद देख रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अपने जज्बात को थोड़े कंट्रोल में रखो, देखो तुम जहाँ जब जाओगे, तुम 3 दिन के बाद अपने बच्चों बच्चे से जब मिलोगे तो वहाँ पे यतीम बच्चे भी खेल रहे होंगे,
उनके दिलों में एहसास जाग उठेगा कि हमारा भी बाप होता तो आज हमें भी यूं गले लगाता। इतनी मोहब्बत का इजहार उसे ले आना आराम से, और घर लाके जितना प्यार करना होगा तन्हाई में उससे करना, लेकिन वहां पे यतीम बच्चों का ख्याल रखना। बहुत से बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होंगे, वो इस तुम्हारी मोहब्बत में देख के वो उनके दिलों पे क्या गुजरेगी, और बहुत से उनके आंसू निकल आएंगे। जब ये बातें महफिले पाक में हो रही हैं, तो वो जो नॉन बिलीवर था उसका दिल पसीज गया। उसने ये सोचा कि एक ऐसा मज़हब और उसके नबी जो हैं लोगों को ये तालीम दे रहे हैं कि दूसरों की के जज्बात का ख्याल रखना है, अपनी खुशी का। और वो खुद भी सोच रहा था कि 3 दिन के बाद जब फादर मिलेगा अपने बच्चे से, ऑब्वियसली वो तो हो जाएगा निसार अपने बच्चे, और वो खुशी जो दीदनी होगी उसको छुपा के मुख्तस कर दिया है इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तन्हाई में उससे बच्चे से प्यार करना। वो इतना इम्प्रेस हुआ और फौरन उसने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हें कौन सी ऐसी चीज ने, इस्लाम की इकदार ने तुम्हें मुतासर किया कि तुमने इस्लाम कबूल किया, तो उसने कहा कि मुझे ये चीज़ बड़ी इनकी खूबसूरत लगी कि इनकी जो टीचिंग्स हैं वो एक फर्द वाहद तक नहीं है, वो एक पूरी सोसाइटी क्या पूरे कहते हैं कि नस्लों तक वो इनकी जो टीचिंग्स हैं वो पहुंचती हैं, और मुझे हिला के वो कहता कि रख दिया इस वाक्य ने। और मैंने कहा कि इससे बेहतरीन मज़हब जो है कोई और हो ही नहीं सकता। सामईन इकराम, यही हमारे इर्द गिर्द के हालातों वाकियात हैं जिससे मैंने जब जब खुद भी मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कि वाकई हम इंसान होने की जो अपनी कदर है वो किससे करवाते हैं? क्या बस बहुत ज़्यादा नमाज़ें हम पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, अपने मज़हब का प्रचार करते हैं, कभी हमने इर्द गिर्द देखा है कि हमारे इर्द गिर्द हालात क्या है, लोग किन हालात में जी रहे हैं? सबकी खुशियों को कभी हमने मद्देनज़र रखा, ये सबके दुखों को हमने कभी मद्देनज़र रखा? ये चीज़ें जो है ना, आप यकीन करें कि मैं बहुत जब इनको देखती हूँ, मेरा हमेशा से, आप सब भी जानते हैं कि यही मैं मकसद भी, और मैं सोचती हूँ कि हम ये सोसाइटी प्रैक्टिकली हम जैसे जी रहे हैं, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात लोगों से कैसे जुड़े हुए, हमने अपनी खुशियों की खातर दूसरों की खुशियों का गला नहीं घोंटना, देखना है। यकीन करें कि ये चीज़ें जो है इंसान को इतनी राहत देती हैं, ये सबका एक जारिया बन जाता है। हमारी इंटेंशंस जो हैं ट्रू होती हैं जब, और हमारे आमाल अकॉर्डिंगली होते हैं, तो यकीन करें एक दुनिया बाग बना हुआ नज़र आती है। सोचना है इस बारे में, हम सब ने मिलकर सोचा।

जी बहुत क्या कहते हैं कमाल की अदाकारी है जी अनुष्का शर्मा की इस सॉन्ग में। वैसे कहा जाता है कि जी अनुष्का शर्मा और जो है वो ये जो साथ शाहरुख खान है इनका जो बहुत ही एक मूवी बड़ी हिट हुई थी आप समझ गए होंगे उसमें इनकी जोड़ी कमाल की है जी। जोड़ी से आपको याद आ गई होगी मूवी भी रब ने बना दी जोड़ी। उसमें दोनों लगते हैं कि जैसे कमाल की इनकी फिल्मी जोड़ी है लेकिन ये सॉन्ग में अब सलमान खान के साथ जो है अनुष्का शर्मा जो है वो क्या कमाल के जौहर दिखा रही हैं। और इस वक्त तो आप भी हैरानगी के समंदर में गुम हो रहे होंगे कि आशा अख्तर भी जो है वो ये बातें जी हम भी बातें कर लेते हैं ऐसी क्योंकि अनुष्का शर्मा जो है वो सबकी फेवरेट हैं। और मैं तो इसे थोड़ी सी हट के मुनफरद सी अदाकारी करती है और फिर जब अपनी वो कुछ कुछ हरकतें नजर आए तो फिर ऑब्वियसली इंसान उस तरफ देखता है अरे ये क्या भाई। तो बस कुछ ऐसा ही है बाकी आप सब जब दोबारा से ये सॉन्ग का एहतमाम करेंगे सुनेंगे सुनेंगे और देखेंगे कि अनुष्का शर्मा और सलमान खान ने क्या बेहतरीन जौहर दिखाए हैं इस सॉन्ग में वो तो आप खुद भी देख लेंगे। जी बिल्कुल मौजूद सामईन इकराम ये जौहर हम सुना रहे हैं दिखाने की बात तो आप खुद करेंगे और ये इस वक्त जौहर और कमालात जो हैं वो सुन रहे हैं ब्रॉडफॉरेशन रेडियो 1413 AM पर। बिल्कुल जी बहुत से न्यू कंटेंट्स वंस अगेन आपको खुश आमदेद। और जी बिल्कुल आयशा अख्तर हैं जी आपकी मेज़बान और प्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर है। और इससे पहले कि आपसे फिर लाइव मुलाकात हो जी हमारी वेबसाइट भी आप सुन लें preferationradio.co.uk है जी। अभी आपने तसल्ली करनी है दिल की कि जी आप ब्रॉडफॉरमेशन रेडियो पर आशा अख्तर को समात फरमा रहे हैं तो जी नंबर मिलाइए हमारा स्टूडियो का 01274306677।

जी बिल्कुल, हमेशा की तरह यही तो बात है कि ब्रेक का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है जी। ब्रेक हमारे सर पे खड़ी है, तो हमने थोड़े से ये 1-2-3 मिनट जो है बस बातों में गुजारने हैं। और बातें भी वो जब ब्रेक बिल्कुल एन आपके यहाँ इंतजार कर रही हो, तो बात मुख्तसर सी हो लेकिन इफेक्टिव एंड वेरी मोस्टर, बहुत जामे, जिसमें सबसे बेहतरीन बात यही है, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। इंतजार कर रही हो तो बात मुख्तसर सी हो लेकिन इफेक्टिव एंड वेरी मोस्टर, बहुत जामे, जिसमें सबसे

0: बचा लिया। सोचना है इस बारे में कैसे सबके लिए हमने, अब आप बात घर से जब शुरू करते हैं अपने बेहतरीन, तो जारी बात है कि हमने अपने घर से बात शुरू करनी होती है। बहुत कुछ हम जो है अपने आप से लगे हुए हालात वाकयात को समेट कर कहीं एक मंजिल की जानिब जब बढ़े होते हैं, विद ट्रू इंटेंशंस टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत तक का सफ़र फिर बहुत सुहाना रहता है। सोचना है हम सब ने मिलके, अमल करना है हम सब ने मिलके इस बात पर, और मुझे ये बहुत बेहतरीन बात लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरी बात ये पसंद आई होगी। यही तो बात है कि बात पसंद की ही करनी है। जब बात पसंद की हो तो आइए चलते हैं एक ब्रेक की तरफ।
1: 1:03 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1:03 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffert Lane ब्रेडफोर्ड, BD95BR 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 1:01 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
11: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेंस बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
10: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
15: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online.
0: जी बिल्कुल, मौजूद सामने क्रम ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM की बहुत ही खूबसूरत, क्या कहते हैं, दिलकश नशियात जो है आप समाप्त फरमा रहे हैं। हमारे स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 पर अपनी आरा जो है वो देना मत भूलिएगा। हमारी वेबसाइट ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो .co

About UK, honestly बहुत अच्छा लगता है. जेन्युइन रहना, नेचुरल जो अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक किया है, और पुरसकून अल्लाह ताला हम सबको रखे, आमीन. पुरसकून सी एनवायरनमेंट हो और बहुत अच्छे लोगों का साथ हो. अल्लाह ताला हमारे जीवन साथियों को, हम सबको अल्लाह ताला इतने खूबसूरत सफ़र और सुहाने सफ़र में रखे, आमीन. बहुत सी दुआएं भी हैं और दुआओं के मरहूने मिन्नत, अपनी इंटेंशंस को ट्रू रखते हुए एक सुहाने सफ़र की तरफ बढ़ते चले जाएं. जिंदगियां जो हैं वो खूबसूरत जिसे कहते हैं ना, सफ़र पर रवा दवा हो तो बहुत ही अच्छा लगता है. खूबसूरत वर्ड अदा करते हुए कभी कभी एक चुटकुला सा जिसे कहते हैं वो ये कि बहुत से फेलोज़, और अक्सर ही मैं अपनी उस फेलो को आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, उसका ज़िक्र करना शेयर करती हूँ. ज़िंदगी में बहुत से लोग, अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे, आमीन, हमारी फैमिलीज़ को, बहुत से ऐसे फेलोज़ होते हैं जो कभी कभी बिछड़ जाते हैं लेकिन यादें बहुत अनमिट सी छोड़ जाते हैं. जेन का वंस अगेन जिक्र आ गया तो वो बड़ी अच्छी मुझे उसकी खूबसूरत सी बात याद रह जाती है. सर देखिए आप इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हैं, मजाक के तौर पे जब वो कहती है. जोकिंग यार, जोकिंग क्या हो गया है. तो ये ऐसी बातें जो है ना जिंदगी का हिस्सा है. खैर बहुत इस वक्त मेरे सामने एक प्यारा सा नगमा है, गीत है, और मज़ीद हम अपनी गुफ्तगू में आगे बढ़े तो मेरे ख़्याल में सुन लेना चाहिए. लेकिन शुरू में ही इस बारे में आप कोई आरा ना कायम कर लीजिएगा, पूरा सॉन्ग सुनिएगा, आप रियली इससे महजूज़ होंगे. आइए सुनते हैं.

जी बिल्कुल मौजूद इकराम ब्रॉडकास्टिंग रेडियो 14:13 AM की खूबसूरत सी नशियात जेरे समात आप सबके हमारी वेबसाइट ब्रॉडकास्टिंग रेडियो .co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। क्या ख्याल है कि जिंदगी की इस गहमा गहमी में, इस शोर में, और बाज़ औक़ात चाहते हुए और बाज़ औक़ात ना चाहते हुए भी हमारी शिरकत जो है कुछ जगहों पे होती है, कैसे अपने आप को हमने अपनी नुमाइंदगी का एहसास दिलाना है और दूसरों की कुछ ऐसे लोगों से वास्ता पड़ जाता है कि हमें वहाँ पे बाज़ औक़ात ठहरना भी मुश्किल लगता है, लेकिन लेकिन यहाँ पे हमें अपने ज़र्फ को दिखाना होता है। यही है ज़िंदगी और इसी का नाम, इसी को जीने का नाम देते हैं, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। मुझे अपनी टीचर्स की फिर वही बात याद आ जाती है कि वो हमारी एक बहुत अच्छी इंग्लिश टीचर होती थी, मैं अब कहूँगी कि वो मुझे हमेशा कहती है प्लीज़ लाइफ इज़ ऑलरेडी वेरी टफ, डोंट मेक इज मोर टफ, ओके, डोंट मेक इट मोर टफ, ओके। तो मैं कोई को भी क्वेश्चन ऐसे करती ना तो वो कहती है तुम पता नहीं किधर से क्वेश्चन निकालती हो, मेरे मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब देना ना बहुत मुश्किल लगता है। तो फिर मुझे बात बहुत अच्छी तरह याद रही कि वाकई ईजी वर्जन में लेना है, सुख शांति के साथ इंशाल्लाह लाइफ को और अपनी फीलिंग्स और एहसास जज्बात जो हैं दूसरों के भी देखने होते हैं और बहुत कुछ जिसे कहते हैं अपनी ज़ात की भी नफ़ी ही हो जाती है प्रैक्टिकल लाइफ में। बातें मैं कर लूँ और मोल मोती आपको सुनाऊँ, बड़ी बड़ी बातें सुनाऊँ और ये करूँ, लेकिन बात जब प्रैक्टिकल लाइफ में होती है ना तो आई रियली लाइक इट कि टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। वो हमें अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल बनना है और प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो फिर वो लाइफ जो मैं कहती हूँ वो तो पड़ा तो ऐसे था, तो वो कहते हैं मेरे ब्रदर बड़े जो उनकी बात मुझे याद आ गई कि जब बेबी था, मेरा बेटा छोटा सा था, तो वो पता है कि माँ को बड़ा कहा वो जॉली सी लाइफ, आप एकदम से वो बच्चों की जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पड़ते हैं तो कैसा वो ना मेरे बात करने से पहले ही ऑब्वियस, मैं कहती इनको कैसे पता चल जाता, ऑब्वियसली वो एक एक्सपीरियंस से गुजरे होते हैं। तो वो कहते हैं बेटा जी ये वो फिल्मों वाला मूवीज वाला सीन नहीं है कि तुम्हारा बेटा अभी तुम्हारे हाथ में छोटा है, यूं करके आप खेत से गुजर के आओगी किसी पार्क वगैरह से तो ये बड़ा हुआ बड़ा आपके हाथों में हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकली आपने अब आगे बच्चों के साथ टाइम गुजारना हुदाया तो ये लाइफ हो जाती है। सेम फिर मैंने कहा कि यही बात मेरे लिए काफ़ी है। एनी वे हम सब आप सब सोच रहे होंगे कि वाकई जब हम कोई चीज़ जितना भी जैसे कहते इल्म भी पढ़ लें और बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी स्किल, फलसफे जो फिलॉसफी होती है वो पढ़ लें, तो जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना तो फिर हमें वो एक साइड पे बाज़ौकात रख गए तो, लेकिन अगर हम उन बड़ी बड़ी बातों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करें तो ये भी एक आर्ट है। इस बारे में भी आप सोचिएगा। मेरी अपनी फ्रेंड की मुझे बड़ी खूबसूरत सी बात याद आ गई, मुझे कहती हो अल्लाह की बंदी कभी ये सिंपल सादे लोगों को देखा है कैसे लाइफ इंजॉय करते हैं, और तुम लोग जो होते हैं तुम बड़ी बड़ी किताबों के बुक वर्म बने हुए हो और फिर कहते हो मुझे ये टेंशन मुझे वो, हम देखो गरीब तो गरीब, मैं खुद अपने आप को गरीब कहती हूँ, अल्लाह ताला का करम है फजल है, हम सादा से लोग देखो लाइफ को इंजॉय करना सीखते हैं। तो लाइफ जो होती है ना इंजॉयमेंट का मतलब, मैं इन अ गुड सेंस बात कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह,
तो ये सारी बातों की, रंगों की, बातों की अमेजिश जो होती है ना, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होती है. वहां पे हमने अपनी एजुकेशन कैसे यूज करनी है, अपने स्किल्स कैसे यूज करने हैं, और बाज़ुकात स्किल्स और एजुकेशन को जो हम अपने यूं बिखरते देखते हैं, उनको समेटना कैसे है, निभाना, सुलझाना, ये सारे जिंदगी के साथ साथ हैं जी लगे हुए मामलात. कोशिश होती है खूबसूरत सा प्रोग्राम हो, लाइवली, जॉली और रंगों से भरपूर. अल्लाह ताला ने हमें जो लाइफ दी, मेरी बहुत सी बल्कि फ्रेंड्स कहती तो लाइफ एक दफ़ा मिलती है भाई, इतना सा दिमाग होता है उसमें इतना कुछ ना भर लिया करो. एनीवे तो इसलिए फिर मैं बड़ा लाइफ का जो सफ़र है ना, इसको बहुत से मैं खुद सोचती हूँ, देखती हूँ कि मोड़ बड़े काटने पड़ते हैं, बड़े बड़े मोड़ आते हैं. खैर, इन सब चीज़ों को, बातों को हम लेके चलेंगे. आइए एक खूबसूरत सा, इस वक्त जो ये सॉन्ग्स का इम्तिजाज जो सिलेक्शन है ना, मैं देख रही हूँ कि चूँकि बातें भी लाइट लाइट सी और इतने स्किल से, और जो सम टाइम अल्लाह ताला हम सबको खतरा से महफूज रखे, आमीन, पुर खतर से जो मोमेंट होते हैं, मराहिल, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, आमीन, तो अपनी हिफाजत में रखे, आमीन. तो ये रियलिटीज़ ऑफ लाइफ को फेस करने में तो अल्लाह ताला से आसानियों की दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए. हल्का फुल्का सा ये कोशिश कर रही हूँ. आज मैंने कोई गज़लों का इंतखाब नहीं किया, कोई ऐसे जो ओल्ड सॉन्ग्स हैं उनसे मे भी कि मैं जैसे कहते हैं ना कि इरादतन अवॉइड कर रही हूँ, और लाइट लाइट सा म्यूज़िक इस वक्त टोन लाइट रखें और हल्के हल्के धीमे धीमे से सुरों के साथ अपने आप को महसूस करें तो कैसा लगता है. बहुत कुछ चलता रहता है हमारी, आप सब नशरियात सुनते रहते हैं, बड़े बड़े सॉन्ग्स और वो इम्तिजाज ओल्ड, लाइक ओल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड न्यू, फिर लेटेस्ट, इस तरह से. लेकिन इस वक्त ऑनेस्टली मैं ये सोच रही हूँ कि बात बड़े धीरेपन में और मध्यम सुरों के साथ हम अपनी बातों को मिला के, तो ये मध्यम मध्यम जिसे कहते हैं ना प्रोग्राम रखें, तो क्या ख्याल है, अच्छा लगता है. अगर कोई ऐसी बात है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर पर 01274306677. धमाकादार म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो भी आप अपनी फरमाइश का इजहार कर सकते हैं. अदरवाइज़ तो यही होता है, मैं पूछती हूँ अपने कॉलर से तो कहते हैं आप अपनी चॉइस का कोई अच्छा सा नगमा सुना दें, तो मुझे अच्छा लगता है कि धीरा धीरापन और लाइट मोड, और कभी कभी क्या ख्याल है, ऐसा सुनना अच्छा लगता है. आइए एक खूबसूरत सा नगमा सुनते हैं. आई होप यू विल इन्जॉय दिस.

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: एशियन वेडिंग्स UK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online. This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: जी बिल्कुल मौजूद सामईन इकराम, ये ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM है जी। आयशा अख्तर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम इस वक्त पेश कर रही है। हमारे प्रोग्राम से आप महजूज हो रहे हैं ये, और फिर महजूज होते हैं, और ये जो यादें होती हैं प्रोग्राम्स की, ये जिंदगी के किसी भी मोड़ पर यकीन करें कुछ आपकी समेटी हुई, बचा के रखी हुई, जो आपकी जिसे आरा कहते हैं, फीडबैक कहते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे यकीन करें मौसूल हो ही जाती है। बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा से प्रोग्राम्स को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। सो फार अच्छी मुझे फीडबैक मिल जाती है, जस्ट इन केस अगर कोई ऐसी, ऑब्वियसली हम इंसान हैं, कोई बात होती है तो बड़े अच्छे अंदाज से मेरे तक पहुंचती है कि अगर हम इस बात को या इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे कर लेते तो क्या खूब होता। बहुत ही अच्छा है, ज़रूर अपनी आरा दीजिएगा और दिया करें, ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को, मैं स्पेशली अपने बारे में, कि अपने प्रोग्राम्स को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूं और आप तक वेरी इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेटिव जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, ऑब्वियसली इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस होती हैं, ज़रूर सोचिएगा इस बारे में, वो पहुंचाएं और जहनों को, दिलो दिमाग को तरोताज़ा रखने के साथ साथ तबीयत जो है वो खिली खिली रहे, अपने टॉपिक से भी इधर उधर ना हो हम, और बात कर भी लें, कह भी दें, बात बन भी जाए और बात जो है वो सह भी ली जाए। क्या बात है जी, यही तो होता है एक बात की खूबसूरती का राज, के खूबसूरत अंदाज में बात चाहे कड़वी ही क्यों ना हो लेकिन मीठे अंदाज से कर दी जाए तो उसकी जितनी भी तरावत जिसे कहते हैं दूसरों तक पहुंच जाती है। लेकिन बात बहुत मीठी मीठी हो, कड़वे अंदाज में कह दी जाए तो सुर स्वाद ही बात दा ख़त्म हो जाता है। तो ऐत नहीं ना करना असी फिर, क्योंकि फिर पंजाबी तड़का ना लगे तो फिर साड़ा रंग किदा सामने आवे जी। पंजाबी तड़का थोड़ा सा लगा देते हैं बातों बातों में, खूबसूरत सा नगमा तो नहीं इस वक्त बहुत खूबसूरत गज़ल चले बताते हैं पंकज दास की, आपको पता है ये गज़लें जो है कुछ पसंद है आपको, किसी की गज़ल पसंद है बिल्कुल आप भी हमें फरमाइश कर सकते हैं, फ़िलहाल तो इस पर इक्तफा करें। तो आइए एक खूबसूरत सी गज़ल सुनते हैं।

0: बाकी सब गंगा।
1: जी बिल्कुल, हम सब ही धनवाल ही बनने की कोशिश करें, क्या ख्याल है? हम सबको मीठा मीठा बनते रहना चाहिए भाई, क्या ख्याल है? मीठा मीठा इन अ पॉजिटिव सेंस एंड धनवाल इन अ वेरी इफेक्टिव वे, क्या बात है? जी बिल्कुल, क्या बात है कि वो तभी तो कुछ लोगों से हम हजम हो पाएंगे और झेल सकेंगे। हमें ये बड़े स्किल स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं हो गए, क्योंकि कोशिश यही करनी है कि अच्छे वर्जन में रहते हुए यकीन करें कि बहुत से जब हालात से भी वास्ता पड़ता है और जगहों पे भी जाने का, तो पहले यूं करके हम झुरझुरी जिसे कहते हैं ना लेते हैं, लेकिन फिर कहते हैं नहीं, मध्यम तरीके से गुजर जाते हैं। और यकीन करें ऐसे ख्यालात के साथ उस सिचुएशन से बड़े अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। खैर, ये बहुत कुछ कि हमें किसी को हमें झेलना ना पड़े, और धनवाल जो हैं वो हम बहुत खूबसूरती से बने, इंशाल्लाह कोशिश पूरी कोशिश होनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत वर्डिंग भी आजी हमारे प्रोग्राम में। अब कोशिश कर रही हूँ कि ये दिलकश सी जो हमने गज़ल समात फरमाई, तो इसके साथ एक खूबसूरत सा एक और सॉन्ग जो है वो सुना जाए, ताकि पहले गीतों का भी असर जो है वो ज़ायल ना हो, वो तबीयत में घायल हो जाए, क्या ख्याल है?

जी बिल्कुल मज़े साहब, इकरा मेरे पास एक गज़ल है और जैसा कि अभी मैंने कहा कि कुछ सिचुएशंस और हालातों वाकियात में से गुज़रते हुए थोड़ी सी झुरझुरी तो आती है, लेकिन फिर कहते हो नहीं भाई हिम्मत बांधें आगे चलें, ये रियलिटीज़ ऑफ लाइफ होती है ना। तो मुझे हमेशा की तरह मैं कहती हूँ अच्छा लगता है कि हम रियल वर्ल्ड में रहते हुए इन सिचुएशंस का सामना करते हुए हम शेयर करें बातों को। अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं, आपसे अनमोल मोती भी डिस्कस होते हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें भी, और देखें हमने की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रियलिटीज़ ऑफ लाइफ जो होती है ना, यकीन करें बहुत अच्छा लगता है समटाइम्स इनमें रहना, और मुझे ये गज़ल अच्छी लगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगेगी। चलें आए सुनते हैं और फिर कोई डिसीजन लेते हैं। अच्छी ही है, अच्छी है, बहुत अच्छी है जी, सुनते हैं।

जी, मौजूद सामीन इकराम, ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM की खूबसूरत नशरियात आप समात फरमा रहे हैं। हमारी वेबसाइट broadfederationradio.co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी। जी ऐसा ही है, हालात तो वाकयात की वो जिसे कहते हैं जद में, मैं ये लफ्ज़ है एक्चुअली इस्तेमाल करते हुए थोड़ी हेजिटेशन फील कर रही थी कि हालात वाकयात की जद में आना जी, चाहते हुए ना चाहते हुए भी। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ म्यूज़िक भी है हमारे पास, तो वो अभी शेयर करते हैं। लेकिन कुछ एहसासात हमारे खुशी के ऐसे होते हैं कि जिसमें दिल जो है वो हमें झूमता नज़र आता है और हम चाहते हैं कि इन खूबसूरत लम्हों को कहीं ना कहीं से कैद कर लिया जाए। मेरे ख़्याल में आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन से भी समटाइम्स सामना करना पड़ जाता है। और फिर ये भी बात कहते हैं कि जी ओ जो अच्छे मोमेंट होते हैं बड़ी जल्दी गुजर जाते हैं। तो चलिए आए एक खूबसूरत सा भरपूर सा हम सॉन्ग सुनते हैं, होपफुली ज़िंदगी से भरपूर, और आप इसको इंजॉय करेंगे हमारे साथ इस म्यूज़िक को। आइए एक खूबसूरत सा नगमा सुनते हैं।

जी माजरत खा हूँ कि आपको इतनी खूबसूरत धमाल में मैंने इंटरफेरेंस की और बहुत ही दिलचस्पी से मौजूद सामईन इकराम जो है वो समात फरमा रहे हैं। एक तो वाकई बात कि जब सुनने वाले बाज़ौक हो तो प्रोग्राम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल जी, करेक्शन का बहुत शुक्रिया और इतनी दिलचस्पी के साथ आप हमारा प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। फीडबैक आई है जी, ख्याल रखें कि धमाल सॉन्ग, गजल, सूफी सॉन्ग जो है, सूफी कलाम जो है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि ख्याल तो पूरा रखा जाता है लेकिन इंसान है, इधर उधर कोई अल्फाज हो जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप इतने खूबसूरत तरीके से वजाहत करते हैं। जी धमाल है शाजिया खुशक की और अभी फिर घड़ी की तरफ मैंने थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगा कि मैं धमाल के अंदर आप अपनी करेक्शन कर लूं। ब्रेक पे इजाहत करते हैं जी, धमाल है शाजिया खुशक की और अभी फिर घड़ी की तरफ मैंने थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगा कि मैं धमाल के अंदर आप अपनी करेक्शन कर लूं।

0: उससे लुत्फानंदोज होंगे जी बिल्कुल लेकिन आफ्टर द ब्रेक क्योंकि अब ब्रेक में फिर इसके इसमें इंटरप्शन जो है मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि वाकई लुत्फानंदोज होने वाले ये मोमेंट्स है और मैनचेस्टर से हमें रुखसार अहमद साहब ने बड़ी देर के बाद ज्वाइन किया और उनकी खूबसूरत फीडबैक का और करेक्शन का बहुत शुक्रिया और हमेशा की तरह सब सलामत रहें खुश रहें.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाए
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काकी की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
7: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड PD95BR 01274 491 442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स. अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ.
9: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है.
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
8: सोफी ज्वेलर्स 121 ओकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: Listening to Bradford Asian Radio,
15: 1413 AM and online.

जी मौजूद सामईन इकराम, प्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर दिलकश सा प्रोग्राम आपकी फीडबैक ने बल्कि इसे और ज़्यादा दिलकश बना दिया है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम को हमेशा की तरह लाइक करने का और इतनी खूबसूरत फीडबैक देने का। और अभी उसके ऊपर थोड़ी सी और डिस्कशन होती है जी। ब्राफरेशन रेडियो .co.uk जो है ये हमारी वेबसाइट है और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। प्रोग्राम के साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया और शुरू से आखिर तक देखने का भी समाप्त फरमाने का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखें, अगर आप हमें बताएंगे नहीं, वैसे तो आप खुद भी कहते हैं मैं ऑब्वियसली एक हमें सूफी जो सोलफुल जिसे कहते हैं सॉन्ग्स, जो सूफी सॉन्ग्स होते हैं वो पेश करने में बताना पड़ता है और जो आम ऑर्डिनरी सॉन्ग्स गज़ल्स और इसी तरह से धमाल हो गई और बड़े इस तरह से दिलकश से जो भी सॉन्ग से रिलेटेड होते वो बयान कर देती हूँ। तो लेकिन आपकी याद दहानी का बहुत शुक्रिया कि आपने फौरन इन मोमेंट को जो है वो कैच किया, हम तक बात पहुँचाई। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्ला खैर, ब्लेस यू ऑल। जी बिल्कुल, हम अब बात कुछ ऐसी है कि प्रोग्राम जो है हमारा धीरे धीरे जो है अब जी इस मोड़ पे, इस नहज पे आ गया है कि फिर बस दौरानिया बहुत कम रह गया है और मेरी कोशिश है कि एक और खूबसूरत सा ये जिसे सोलफुल हम सूफी सॉन्ग कहेंगे सुने और यकीन करें कि ये दिल की आवाज़ के नाम से इसकी पता ही चलता है। तो आइए ये दिल की आवाज़ जो है इस वक्त सुनते हैं।

जी बिल्कुल मौजूद सामीन इकराम, बिल्कुल बिल्कुल ब्रफरेशन रेडियो 1413 AM आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ये लम्हात जो है प्रोग्राम की शक्ल में, एक इंफॉर्मेशन की शक्ल में शेयर कर रहा है। हमारी वेबसाइट brafordationradio.co.uk है और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। आपकी राह हमारे लिए बहुत कीमती होती है और आपका प्रोग्राम के साथ जुड़े रहना यही हमारा मकसद होता है प्रोग्राम करने का यहाँ पे। और जहाँ कहीं भी हमारी आवाज़ जो है आपकी समातों से टकरा रही है, आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और आप यकीन करें कि जो आज का टॉपिक रहा कि इंटेंशंस हमारी ट्रू हो खालिस नीयत के साथ, अब यहाँ पे भी वो एंड पे कंक्लूजन के तौर पे मैं यही कहूँगी कि हमारी इंटेंशंस ट्रू हो तो हमें जो प्रोग्राम भी समाप्त कर रहे हैं उसमें से हम अपने पसंदीदा जो नुकात होते हैं वो चुन ही लेते हैं। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? जैसा कि अभी हमारे मुअज्ज़ज़ कॉलर भी हमसे ये बात शेयर कर रहे थे जो कि नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है कि हिकमत और दानाई मोमिन की गुमशुदा मिरास है, इसे जहां कहीं पाओ, जहां कहीं इसे पाओ तो इसे समेट लो। तो अब ये बात है कि हमने किस जगह से कोई अच्छी चीज़ ले ली है, कहीं पे आप सफ़र में हैं, आपको अच्छी चीज़ अपने अंदर एब्जॉर्व करें। आप किसी महफिल में हैं, किसी जगह के ऊपर हैं, कहीं भी दुनिया के कोने के ऊपर, वो आप समझे कि ये खूबसूरत हिकमत व दानाई की कोई चीज़ है, हमें वो इंफॉर्मेशन फ्राहम कर रही है, हमारे अंदर एक जिसे कहते हैं ना कि खूबसूरत तब्दीली आ रही है, चेंज आ रही है, हम उससे न सिर्फ लुत्फ़अंदोज हुए बल्कि हम समझते हैं कि ओ वाओ इसकी तो मुझे तलाश थी, ओ वाओ ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे चाहिए थी, तो वो ले लें, वो हमारे लिए है। आप कोई इसका देखें, इंसानियत का भी यहाँ पे दर्स मिल गया। अब बात ये है कि जूमानी बातें बिल्कुल भी नहीं है, ये क्लियर है, जिसमें ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, एक दुनिया तहद्दे नज़र दुनिया है और बेहतरीन वो लम्हात है कि जिसमें हम कोई खूबसूरत सी चीज़ अपने अंदर अडॉप्ट कर लें तो वो हमारी शख्सियत जो है वो निखर जाए और हम कहें कि वाकई मुझे इस खूबसूरत इन्फॉर्मेशन की, इस खूबसूरत चीज़ की तलाश थी। जी बिल्कुल, पॉजिटिव रहते हुए वो अपनी ज़ात को पॉजिटिव करना है, निखारना है, ये खूबसूरतियों का सफ़र। अब घड़ी की तरफ मेरी नज़र है और मैं कहती हूँ कि एक खूबसूरत सा कलाम जिसे मैं अब इन अल्फाज के ऊपर ख़त्म करने का कहूँगी, आपसे इजाज़त भी लूँगी, अल्लाह हाफिज़ कहूँगी कि नाउ इज़ द टाइम टू क्लोज़ योर आइज़ and let your soul rest. Honestly, you will really enjoy this music. Music hai, ya ye kehte hain ki music ke taar hain, dhune hain. Ab main zara bahut carefully selection karun alfaz ki ke ye koi dhun hai jo aapke na sirf dimag ko taravat aur thandak pahuncha rahi hai balki वो कहते हैं कि when you close your eyes and you will feel wow it's really a good musical, आप या soulful सूफी song कह लें तो सूफी कलाम कह लें, अब ये मैंने आप पे छोड़ा है, but we have to close your eyes and ये ज़रूरी नहीं कि आप सचमुच क्लोज करें जहाँ कहीं भी हैं, obviously काम काज करनी है, लेकिन मीनिंग आपको समझ आ गए होंगे और क्या करना है, एंड लेट आवर सोल्स रेस्ट, लेट्स मूव ऑन नाउ।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 14:13 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
7: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
7: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
7: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford, Severn, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी, अकाउंटेंट।
4: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले साबिन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

0: PC or laptop, the best Asian music online.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274 056 014। सोफी ज्वेलर्स।
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201 679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
5: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
9: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाल मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
5: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर।
9: मैनिंगम सुपर स्टोर,
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
0: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
12: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: यू आर लिस्निंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
8: 1413 AM एंड ऑनलाइन।
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

ये ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज़ है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की इस हसीन वादी में। दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं, हमारी आज की महफिल में शरीक हो सकते हैं। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677। साथ ही साथ वो अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे।

उस गजल उसने छेड़ी का आगाज उसके नाम नामी से हो चुका है, जिसे लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। कोई खुदावंद करीम कह कर इल्तिजा करता है, कोई भगवान कह कर प्रार्थना करता है, कोई वाहे गुरु कह कर अरदास करता है और कोई गॉड या लॉर्ड कह कर घुटने टेकता है। उसे किसी भी नाम से, किसी भी वक्त, किसी भी लहजा, किसी भी आन, किसी भी दुख, किसी भी तकलीफ, किसी भी परेशानी, किसी भी मुसीबत में एक बार दिल की गहराइयों से पुकार कर देखिए, वो हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहता है। और दोस्तों, सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि हम सब झुकते एक ही के सामने हैं, मांगते एक ही से हैं, और बेशक वो हम सब का रब है, वो हम सब का रब्बुल आलमी है।

भाई दोस्तों, अब तारुफ हो जाए अपने मेहमानों का जो हमारे बदन की जीनत बढ़ाने के लिए तशरीफ ला चुके हैं। सर फहरिस्त हैं वक़ार साहब, वेकफील्ड से हमारे हमरा तशरीफ लाए हैं रियासत साहब, हजरतफील्ड के हसीन वादी से सुमैरा बिटिया ब्रैडफोर्ड 3 से रियाज साहब ब्रैडफोर्ड से, भगत सिंह साहब हमारी बदन में मौजूद हैं लीच से, डॉक्टर माहरुख साहबा ब्रैडफोर्ड की ससीन वादी से, और हमारे मोहतरम चौधरी रुखसार अहमद साहब मैनचेस्टर की सनती फ़ज़ाओं से। इन तमाम अहबाब ने, आप तमाम सामीन और नाजरीन की खिदमत में मोहब्बत और अकीदत से लबरेज सलाम और ढेरों दुआओं का तोहफा भेजा है। साथ ही साथ चौधरी रुखसार अहमद साहब फूलों का एक गुलदस्ता लाए हैं जो मैं यहाँ मैंने जगह बनाई है और ये सजा दिया है। इसमें आपकी मोहब्बत की खुशबू और फूलों की खुशबू ने मेरे स्टूडियो को महका दिया है। हम आप तमाम को दिल की तमाम तर गहराइयों से गज़ल उसने छेड़ी में खुशामदीद कहते हैं। और अब हम चल रहे हैं हजरतफील्ड की हसीन फ़ज़ाओं में, जहाँ मौजूद हैं हमारे मोहतरम रियासत साहब अपने अहल खाना के हमरा, और सुनना चाहते हैं आज के इस भीगे भीगे दिन में अपने महबूब आर्टिस्ट खान साहब मेहंदी हसन खान साहब की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत। रियासत जीते रहिए, अल्लाह आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तोहफा हाजिर है, कबूल फरमाइए।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। आज इस दिन जबकि बारिश शदीद बरस रही है और इसकी इसमें शिद्दत का इम्कान भी मौजूद है महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक, और वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल का, हमारी ये नशियात और ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से 1413 मीडियम वेव पर। इसी प्रोग्राम को और हमारी नशियात को दुनिया के चार कोनों में ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर भी सुना जा रहा है। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे हमराह वक़ार मियां वेकफील्ड से तशरीफ़ ला चुके हैं और मौजूद हैं, और आज वो इंशाअल्लाह आप सब की दुआओं के साए में लंदन का सफ़र करेंगे। कहते हैं कि रिफत भाई, जो अहवाल आपके यहाँ है वही अहवाल यहाँ वेकफील्ड में भी, शदीद बारिश का शुरू से सिलसिला जारी है और हमारे यहाँ सारा दिन यही सिलसिला जारी रहने का आपकी तरह इम्कान मौजूद है। दोस्तों बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं वेकफील्ड, लेकिन ये तकरीबन बरतानिया भर में मौसम जब होता है तो यकसा ही होता है मुख्तलिफ शहरों में, बहुत कम साउथ में बार दफ़ा कम हो जाता है सिलसिला उस शिद्दत का जो यहाँ पाई जाती है। बहरहाल अब हम चलते हैं कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद हम आपको वेकफील्ड लिए चलेंगे और वक़ार मियाँ को आपकी और हमारी ढेरों दुआओं के साए में रुख्सत करेंगे लंदन के लिए और उनका तोहफा उनकी नज़र करेंगे। मुलाकात होती है कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद।

0: 7
1: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
2: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
2: बालियां अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
2: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
2: आपकी शान
1: हमारी आन,
2: क्वालिटी की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR, 01274491442।
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
3: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
2: सोफी ज्वेलर्स?
3: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
2: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
1: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
6: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
8: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
9: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
10: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
11: और दोस्तों, हस्ब वादा हम आपको लिए चल रहे हैं वेकफील्ड, जहां मौजूद हैं वकार साहब अपने अहल खाना के हमरा। ढेर सारी दुआओं के साथ हम आपको रुख्सत करेंगे आपके गीत के तोहफे के साथ, लेकिन उससे पहले हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे बर्नले से हमारे मोहतरम लिसनर खाल अपने बहुत ही प्यारे शकील भाई को। उनकी आमद हो चुकी है, सुनना चाहते हैं एक गीत जो हम उनकी नज़र करेंगे, लेकिन अभी तो हम चल रहे हैं वेकफील्ड। वकार मियां जीते रहिए, जो मोहब्बत चाहत और प्यार आप दिखाते हैं हमारे लिए बाइस से मुसर्रत है। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आपका तोहफा लेकर हाजिर हैं। हैव अ नाइस एंड सेफ जर्नी।

और दोस्तों अब हम आपको लिए चल रहे हैं लीड्स की फजाओं में, जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम लिसनर जनाब भगत सिंह साहब। उनका मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामीन और नाज़रीन तक पहुंचे। आपकी ये मोहब्बत है कि आप इस कदर बाकायदगी से तशरीफ़ लाकर हमारी हौसला अफजाई करते हैं, आपका तोहफ़ा लेकर हाजिर हैं। आमद का बहुत शुक्रिया, कबूल फरमाइए।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। हम अपने उन नादीदा लिसनर्स और श्रोते मुजाहिदों को भी खुश आमदीद कहते हैं जो हमें ऑनलाइन एक कसी तादाद में सुन रहे हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं बर्नले, जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम शकील साहब, और उन्होंने इरशाद फरमाया है कि कल खान साहब मेहंदी हसन खान साहब की बरसी है। दोस्तों, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। खान साहब मेहंदी हसन खान साहब की सहर अंगेज, मशहूर कुन, दिलकश और दिल में उतर जाने वाली आवाज़ में एक बेइंतहा खूबसूरत गीत सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है शकील साहब ने, जो हम उनकी नज़र कर रहे हैं। इस दुआ के साथ इन एडवांस, बरसी तो कल है उनकी, कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मग़फ़िरत फरमाए। आइए चलते हैं बर्नले। शकील भाई, आपकी आमद का बेइंतहा शुक्रिया, आपका खिराज अकीदत खान साहब मेहंदी हसन खान साहब के नाम।

0: और ये पसंद थी हमारी मोहतरम डॉक्टर मारुख साहबा की ब्रेडफोर्ड की हसीन वादी से। घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि कमर्शियल का वक्त हुआ जा रहा है। कमर्शियल के फौरन बाद हम आपका पसंदीदा सेगमेंट वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग लेकर हाजिर रहेंगे। मेहमान शायरा कौन है ये तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। और हाँ, हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे परदेसी मजीद साहब को, जो खारियाँ गुजरात पाकिस्तान से अभी अभी हमारी बज़्म में शामिल हुए हैं। आपका गीत मैंने नोट कर लिया है, प्रोग्राम सुनते रहिए, ज़रूर शामिल प्रोग्राम करेंगे। आमद का बेइंतहा शुक्रिया।
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online. You're listening to Bradford Asian Radio.
2: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
3: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
3: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
3: एशियन वेडिंग्स UK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

0: और दोस्तों आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की सचिन वादी में और दुनिया के चार कोनों में से ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर सुना जा रहा है। वक्त हुआ है आपके पसंदीदा सेगमेंट वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग। आज की हमारी मेहमान शायरा, जिनकी लिए मैं ये कह दूं कि बेइंतहा खूबसूरत सोच और फिक्र की मालिक हैं। आपको पता है कि वक्त के साथ साथ अंदाज बदलते जाते हैं। एक ज़माना था कि मुशायरों का जो अहतमाम किया जाता था, तमाम शुरका ज़मीन पर बैठते थे और बीच में कालीन सजा होता था और उस पर चारों तरफ गांव तकिए हुआ करते थे और शोरा वहां तशरीफ रखते थे। फिर वक्त ने करवट ली, कालीन की जगह स्टेज ने ले ली और उन दरियों की जगह कुर्सियों ने ले ली। जब मुशायरे में मौजूद शोरा को कलाम पसंद आता तो वो वाह वाह की सदाएं बुलंद करते, क्या खूब कहा है, वाह वाह क्या बात है, क्या अंदाज है, क्या सोच है, क्या फिक्र है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने और तब्दीली, अब शोरा बजाए दादो तहसीन वसूल करने के अपने सुनने वालों से कहते हैं कि तालियां बजाकर हमारे अशार को कबूलियत का शर्फ बख्शें। खैर, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, वक्त ने बहुत बड़ी करवट ली। लेकिन अब मुशायरों का सिलसिला हॉलों में नहीं, इंटरनेट पर होता है। इंटरनेट मुशायरे होते हैं और उसमें शोरा आते हैं और अपना कलाम सुनाते हैं मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ मुल्कों से। उन्हीं शोरा को जिन्हें बेइंतहा पसंद किया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मौका मिलता है कि वो मुशायरों की दुनिया में तशरीफ़ लाएं और अपना सिक्का जमाएं। उनकी पहचान इंटरनेट पर पढ़े हुए वो मुशायरे होते हैं जिसमें दुनिया के चार कोनों से लोग शिरकत करते हैं। उन्हीं में बाज़ दफ़ा हीरे भी मिल जाते हैं, जैसे आज हमारी मेहमान शायरा हैं। उन्होंने आगाज़ इसी तरह से किया था लेकिन अब वो मुशायरों की जीनत बनने लगी हैं। नाम है इनका फौजिया रबाब। दोस्तों, वक्त के साथ साथ आपको और हमको चलना है। इससे ये हुआ कि जो बाकायदा शोरा थे, शोरा तो ये भी जाहिर है कायदे से आए हैं, लेकिन स्टेपिंग डिफरेंट हो गई। सो अब हम आज की मेहमान शायरा फौजिया रबाब को, जिनका ताल्लुक दिल्ली से है और एक बहुत बड़े इल्मी और अदबी घराने से है, आज हम उनका खूबसूरत कलाम सुनकर महजूज होंगे और उनकी सोच और फिक्र को दाद देंगे। आप जानते हैं वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग का मकसद ही ये है कि नए ख़वातीन शोरा जो हैं, जितनी नई ख़वातीन शोरा हैं उनकी हिम्मत अफजाई करना और जो बेइंतहा मकबूलियत की शोहरत की बुलंदियों पर हैं उन्हें खराज तहसीन पेश करना और जो हमसे रुखसत हो गई हैं उन्हें खराज अकीदत पेश करना है। तो मैं दावत देता हूँ आज की मेहमान शायरा, जो बेइंतहा संजीदा अंदाज है, खूबसूरत सोच और फिक्र की मालिक हैं, मोहतरमा फौजिया रबाब, तशरीफ लाइए।
1: सजी हुई है अदबी सितारों की उसमें सबसे छोटा नाम है मेरा। उम्मीद है कि आप सबकी मोहब्बतें मुझे हासिल होंगी। एक मतले से आगाज़ करती हूँ।
2: इरशाद।
1: चश्मे उल्फत लड़ गई है इन दिनों, चश्मे उल्फत लड़ गई है इन दिनों, एक कजब सी बेकली है इन दिनों, इश्क भी करना है घर के काम भी।
2: वाह।
1: इश्क भी करना है घर के काम भी, ये मुसीबत भी नहीं है इन दिनों।
2: वाह वाह।
1: ये मुसीबत भी नहीं है इन दिनों।
2: वाह।
1: बहुत शुक्रिया। शोख सी लड़की को देखो क्या हुआ, शोख सी लड़की को देखो क्या हुआ, कितनी गुमसुम हो गई है इन दिनों।
2: वाह।
1: कितनी गुमसुम हो गई है इन दिनों। बेहद शुक्रिया। एक मतलब यूँ है कि तेरी आँखों में जो एक कतरा छुपा है मैं हूँ।
2: क्या कहना?
1: तेरी आँखों में जो एक कतरा छुपा है मैं हूँ, जिसने छुप छुप के तेरा दर्द सहा है
2: मैं हूँ।
1: मैं हूँ।
2: वाह।
1: जिसने छुप छुप के तेरा दर्द सहा है।
2: क्या कहना है?
1: मैं हूँ।
2: वाह वाह वाह।
1: बहुत शुक्रिया। तेरी आंखों में जो एक कतरा छुपा है मैं हूँ, जिसने छुप छुप के तेरा दर्द सहा है मैं हूँ, एक पत्थर के जिसे आँच ना आई तू है।
2: आहा।
1: एक पत्थर के जिसे आँच ना आई तू है, एक आईना के जो टूट चुका है
2: मैं हूँ। वाह वाह वाह वाह।
1: एक आईना के जो टूट चुका है मैं हूँ, तुझ में डूबी तो मुझे अपनी खबर ही कब थी।
2: वाह।
1: तुझ में डूबी तो मुझे अपनी खबर ही कब थी, मैंने ये दूसरे लोगों से सुना है
2: मैं हूँ। वाह वाह।
1: मैंने ये दूसरे लोगों से सुना है मैं हूँ।
2: वाह वाह वाह।
1: और ये शेर बतौर ख़ास के उसने जब भी कहा कोई नहीं शायद अपना, उसने जब भी कहा कोई नहीं शायद अपना, मैंने बेसाख्ता हर बार कहा है
2: मैं हूँ। वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: मैंने बेसाख्ता हर बार कहा है मैं हूँ।
2: फिर फरमाइए फिर फरमाइए।
1: बहुत शुक्रिया। उसने जब भी कहा कोई नहीं शायद अपना, मैंने बेसाख्ता हर बार कहा है
2: मैं
1: हूँ।
2: वाह
1: बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाहजी, बहुत शुक्रिया। देर तक आँख मुसीबत में पड़ी रहती है।
2: वाह।
1: बहुत शुक्रिया। देर तक आँख मुसीबत में पड़ी रहती है, तुम चले जाते हो तस्वीर बनी रहती है।
2: वाह वाह वाह वाह वाह।
1: तुम चले जाते हो तस्वीर बनी रहती है।
2: वाह वाह वाह।
1: मैं उसके सब ख्वाब किसी और की तहवील में है, उसके सब ख्वाब किसी और की तहवील में है, मेरी आंखों पे तो अब धूल जमी रहती है।
2: अरे वाह वाह वाह।
1: मेरी आंखों पे तो अब धूल जमी रहती है। बहुत शुक्रिया। और किसको अपना हाल सुनाएं?
2: आप बताएं।
1: आप बताएं कैसे दिल को हम समझाएं? आप बताएं।
2: वाह।
1: कैसे दिल को हम समझाएं? आप बताएं। आप कहें मैं बाद में ही अपनी कह लूँगी। आप कहें मैं बाद में ही अपनी कह लूँगी, आप कहीं फिर भूल ना जाएं। आप बताएं।
2: वाह वाह वाह।
1: आप कहीं फिर भूल ना जाएं। आप बताएं। बोलें आप पे कोई कयामत गुजरेगी क्या?
2: क्या कहना है?
1: बोलें आप पे कोई कयामत गुजरेगी क्या, आपके जैसे हम हो जाएं?
2: वाह।
1: आप बताएं।
2: वाह वाह वाह।
1: आपके जैसे हम हो जाएं?
2: वाह।
1: आप बताएं। फ़र्क कहाँ रह जाएगा फिर हम दोनों में? फ़र्क कहाँ रह जाएगा फिर हम दोनों में, हम भी कर एहसान जताएं।
2: आप बताएं।
1: आप बताएं।
2: वाह वाह वाह। वाह वाह वाह, क्या कहना है।
1: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। फ़र्क कहाँ रह जाएगा फिर हम दोनों में, हम भी गर एहसान जताएं, आप बताएं। दिल में तस्वीर तेरी, आँख में आसार तेरे।
2: वाह।
1: दिल में तस्वीर तेरी, आँख में आसार तेरे, जख्म हाथों में लिए फिरते हैं बीमार तेरे।
2: वाह वाह।
1: जख्म हाथों में लिए फिरते हैं बीमार तेरे। ज़ोम है तुझको अगर अपने कबीले पे तो सुन।
2: वाह।
1: ज़ोम है तुझको अगर अपने कबीले पे तो सुन, मेरे कदमों में गिरे थे कभी सरदार तेरे।
2: क्या कहना है। वाह वाह वाह, फौजिया जिंदाबाद। वाह वाह
1: वाह, शुक्रिया
2: वाह
1: वाह शुक्रिया। ज़ोम है तुझको अगर अपने कबीले पे तो सुन, मेरे कदमों में गिरे थे कभी सरदार तेरे।
2: वाह।
1: तेरे ख्याल से निकले तो दास्तां हो जाए।
2: वाह।
1: तेरे ख्याल से निकले तो दास्तां हो जाए, नसीब हो जो तेरा साथ जावेदा हो जाए।
2: वाह।
1: नसीब हो जो तेरा साथ जावेदा हो जाए, तुम्हारे मिलने तलक कादिरुल कलाम रहे।
2: वाह।
1: तुम्हारे मिलने तलक कादिरुल कलाम रहे, तुम्हारे सामने आए तो बेजुबान हो जाए। तुम्हारे सामने आए
2: तो
1: बेजुबान हो जाए। वो दूर जाए तो ले जाए हर खुशी मेरी। वो दूर जाए तो ले जाए हर खुशी मेरी, करीब आए तो सब गम यहाँ वहाँ हो जाए।
2: वाह वाह वाह वाह।
1: करीब आए तो सब गम यहाँ वहाँ हो
2: जाए। वाह वाह वाह,
1: बहुत शुक्रिया। दलील है तेरे होने की ये हमारा वजूद। तमाम ख्वातीन की जानिब से शेर कि दलील है तेरे होने की ये हमारा वजूद, तेरा निशान भी ना हो हम जो बेनिशान हो जाए। तेरा निशान भी ना हो हम जो बेनिशान हो जाए। बहुत शुक्रिया। एक सादा से गज़ल से चंदा शाह के, उसके लहजे में ढल रही हूँ मैं,
2: उसके लहजे में ढल रही हूँ मैं,
1: उसके लहजे में ढल रही हूँ मैं, खुद से गोया निकल रही हूँ मैं।
2: वाह।
1: खुद से गोया निकल रही हूँ मैं, अब वो मुश्किल समझ रहा है मुझे, अब वो मुश्किल समझ रहा है मुझे, जिसकी मुश्किल का हल रही हूँ मैं।
2: वाह वाह वाह वाह।
1: अब वो मुश्किल समझ रहा है मुझे, जिसकी मुश्किल का हल रही हूँ मैं।
2: वाह
1: बहुत शुक्रिया। तू है उजली किरण सवेरे की, तू है उजली किरण सवेरे की, शाम हूँ और ढल रही हूँ मैं।
2: वाह।
1: शाम हूँ और ढल रही हूँ।
2: क्या कैफियत, क्या तासुर बयान किया है। वाह वाह वाह,
1: बहुत शुक्रिया। मुझको मुड़ मुड़ के देखता क्या है, मुझको मुड़ मुड़ के देखता क्या है, तेरे पीछे ही चल रही हूँ मैं।
2: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: मुझको मुड़ मुड़ के देखता क्या है,
2: वाह,
1: तेरे पीछे ही चल रही हूँ मैं। आज कितना बदल गया है वो, आज कितना बदल गया है वो, जिसका नैमुल बदल रही हूँ मैं।
2: वाह वाह वाह वाह,
1: जिसका नामुल बदल रही हूँ मैं। एक गज़ल से चंद अशारे हैं कि जारी है सांसों में सरगम, अल्लाह खैर करे।
2: वाह।
1: जारी है सांसों में सरगम, अल्लाह खैर करे, गीत की लय है मध्यम मध्यम, अल्लाह खैर करे, गीत की लय है मध्यम मध्यम, अल्लाह खैर करे, उसके लब पर बातें मेरी बातों में शोखी, उसके लब पर बातें मेरी बातों में शोखी, इस पर उसका लहजा मध्यम, अल्लाह खैर करे।
2: वाह।
1: इस पर उसका लहजा मध्यम, اللہ خیر کرے. بس بھی کر اب ظالم ہم پر کتنے ظلم کرے گا. بس بھی کر اب ظالم ہم پر کتنے ظلم کرے گا, اتنے بھی مضبوط نہیں ہم. اللہ خیر کرے. اتنے بھی مضبوط نہیں ہم, اللہ خیر کرے. ایک نظم پیش کرنا چاہتی ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر. بچھڑنے سے ذرا پہلے تم اپنے دھیان میں رکھنا, بچھڑنے سے ذرا پہلے تم اپنے دھیان میں رکھنا, میرے خوابوں کی ٹوٹی کرچیوں پہ پیر رکھو گے تو اتنے زخم آئیں گے کہ ساری عمر مرہم رکھتے رکھتے بیت جائے گی.
2: کیا کہنا ہے؟
1: میرے خوابوں کی ٹوٹی کرچیوں پہ پیر رکھو گے تو اتنے زخم آئیں گے کہ ساری عمر مرہم رکھتے رکھتے بیت جائے گی. میرے اشکوں کو اپنے ہاتھ سے محروم رکھنے کی سزا تو کاٹنی ہوگی. میرے اشکوں کو اپنے ہاتھ سے محروم رکھنے کی سزا تو کاٹنی ہوگی. تم اپنی آنکھ کو جلتھل لیے, تم اپنی آنکھ کو جلتھل لیے جس شخص کے در پہ بھی جاؤ گے فقط ٹھوکر ہی کھاؤ گے. تم اپنی آنکھ کو جلتھل لیے جس شخص کے در پہ بھی جاؤ گے فقط ٹھوکر ہی کھاؤ گے. تمہارے آنسوؤں کو چن نہ پائے گا کوئی, سن لو, میرے خوابوں سے مت الجھو, میرے خوابوں سے مت الجھو, تم ان کے ٹوٹ جانے سے خدا را خوف تو کھاؤ, ٹھہر جاؤ. بہت شکریہ. وہ اگر بات ماننے لگ جائیں, وہ اگر بات ماننے لگ جائیں, ان کے بھی سارے غم مجھے لگ جائیں, ان کے بھی سارے غم مجھے لگ جائیں. اپنے بارے میں سوچتے ہوئے ہم, اپنے بارے میں سوچتے ہوئے ہم تیرے بارے میں سوچنے لگ جائیں.
2: کیا کہنا ہے؟
1: ہم جسے دیکھ لیں فقط ایک بار, ہم جسے دیکھ لیں فقط ایک بار, سب کے سب اس کو دیکھنے لگ جائیں.
2: بہت اچھا ہے, واہ واہ واہ,
1: بہت شکریہ. ہم جسے دیکھ لیں فقط ایک بار, سب کے سب اس کو دیکھنے لگ جائیں. ایک غزل سے چند اشعار دیکھیں کہ عشق سے کیا ملا لپٹ کے مجھے, عشق سے کیا ملا لپٹ کے مجھے, خود میں رہنا پڑا سمٹ کے مجھے. خود میں رہنا پڑا سمٹ کے مجھے, زنگ آلود ہو گئیں آنکھیں,
2: زنگ آلود ہو گئیں آنکھیں,
1: زنگ آلود ہو گئیں آنکھیں, تو نے دیکھا نہیں پلٹ کے مجھے.
2: واہ,
1: تو نے دیکھا نہیں پلٹ کے مجھے. دیکھنے پڑ رہے ہیں گزرے پل, دیکھنے پڑ رہے ہیں گزرے پل, اس کی خاطر الٹ پلٹ کے مجھے.
2: واہ,
1: اس کی خاطر الٹ پلٹ کے مجھے. جذبوں نے غداری کی, جذبوں نے غداری کی, پھر سے بات تمہاری کی, پھر سے بات تمہاری کی, جی لیتے ہو میرے بن, جی لیتے ہو میرے بن, کیسے یہ فنکاری کی.
2: واہ واہ,
1: جی لیتے ہو میرے بن,
2: واہ,
1: کیسے یہ فنکاری کی. یہ تو وقت بتائے گا, یہ تو وقت بتائے گا کس نے وقت گزاری کی.
2: اچھا ہے یہ شعر بھی, اچھا ہے, واہ واہ واہ.
1: یہ تو وقت بتائے گا کس نے وقت گزاری کی. کٹھن ہے راز سا دیکھو ہماری بات سنو, پکڑ کے ضد نہ یوں بیٹھو ہماری بات سنو.
2: واہ,
1: پکڑ کے ضد نہ یوں بیٹھو ہماری بات سنو, خدا کرے کبھی پاکیزگی کھلے تم پر.
2: واہ,
1: خدا کرے کبھی پاکیزگی کھلے تم پر, ہماری آنکھوں میں جھانکو ہماری بات سنو.
2: واہ,
1: ہماری آنکھ میں جھانکو ہماری بات سنو, ہمارے بعد हमें आसमान लिख दोगे, अभी तो जीते हैं लोगो, हमारी बात सुनो।
2: वाह,
1: अभी वा, तो जीते हैं लोगो, हमारी बात सुनो। बहुत शुक्रिया।
2: वाह वाह वाह।

0: Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: वाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात।
6: 677
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ।

0: दुल्हन वो जो पिया मन भाई।
1: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए।
0: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
1: बालियां, अंगूठियां और हार।
0: जो दुल्हन करे सिंगार।
1: आज ही मामू काके की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
1: आपकी शान
0: हमारी आन,
1: क्वालिटी की पहचान।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, PD95ER01274491442।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
1: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
1: सोफी ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
4: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
10: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
12: दोस्तों, इससे पहले के हस्ब वादा हम आपको मिडिल्सब्रा लेकर चलें और हमारी बिटिया सुमेरा ब्रैडफोर्ड 3 से आपका तोहफा आपकी कजन्स तक पहुंचाएं। हमारे बहुत खूबसूरत मेहमान तशरीफ ला चुके हैं बनडे से, जनाबे जी जनाबे शकील साहब। उनसे पहले मुलाकात करते हैं, देखते हैं आज आपके लिए वो क्या तोहफा लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम।

अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। मैं चेक करता हूँ।

जी हाँ, समझ में आ गया मेरी। और अब हम बात करने जा रहे हैं अपनी मोहतरम शकील साहब से, और आपको बन ले लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।

0: Assalamualaikum.
1: हाँ बिल्कुल, बहुत कम आ रही है।
2: अब आवाज
1: अब
2: सही
1: ठीक
2: है?
1: है।
2: हाँ ठीक है।
1: अच्छा तो मुझे इनको ढूंढ रहे हैं, तो मैं इनको रख दी थी।
2: इनका संभाल के रखा कीजिए, उनसे दोस्ती पक्की रखें।
1: नहीं, वो उसमें कुछ चीजें इनको भी बगैर पढ़नी पड़ती हैं और कुछ चीजें इनका लगा कर पढ़नी पड़ती है,
2: अच्छा।
1: तो जो दूर की चीज हो तो वो इनको उतार देता हूँ मैं,
2: अच्छा।
1: तो नजदीक जो इनकम पहन लेता हूँ, तो बस जिंदगी ऐसे ही गुजर रही है, क्या
2: अल्लाह आपको
1: करें।
2: हमेशा अपने
1: जी
2: हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।
1: अभी तो एक अपॉइंटमेंट गया तो उन्होंने कहा तुम्हारी अपॉइंटमेंट तो हो गई थी पिछले हफ्ते, आप क्या लेने आए हो? तो मैंने कहा आपने तो खत भेजा था, ऐसा तो होता है, ये भी लोग गलतियां कर लेते हैं ना।
2: जी, होता है कभी कभी ऐसा।
1: तो गाना तो मैंने आपको बता दिया, वो
2: जी,
1: दिला ठहर जा यार दा नजारा लेने दे, ये
2: जी
1: मेरा है मुनीर मुनीर हसैन की आवाज में है
2: जी
1: मेरा है।
2: जी जी जी बिल्कुल सही।
1: अच्छा, तो वैसे ये छोटी सी गजल है, आपके प्रोग्राम में शिरकत करनी थी।
2: जी,
1: पत्थर बना दिया मुझे रोने नहीं दिया,
2: वाह वाह वाह वाह,
1: दामन भी तेरे गम से भगोने नहीं दिया, तन्हाइयां
2: आहा,
1: तुम्हारा पता पूछती रही,
2: वाह वाह
1: सब बार तुम्हारी याद ने सोने नहीं दिया,
2: वाह वाह वाह,
1: आंखों में आग के बैठ गई अशकों की लहर,
2: आहा,
1: पलकों पे कोई ख्वाब पुरोने नहीं दिया,
2: वाह वाह वाह वाह,
1: दिल को तुम्हारे नाम की आंसू अजीज थे, दुनिया
2: आहा,
1: का कोई दर्द समोने नहीं दिया।
2: वाह वाह वाह वाह,
1: नासर यूं उसकी याद चली
2: हाथ
1: आती
2: थाम
1: पांव
2: ने।
1: के मेले में, इस जहां को खोने नहीं दिया।
2: वाह वाह वाह वाह,
1: तो बस ये थी शायरी थी, तो ठीक है जी।
2: बहुत शुक्रिया
1: अभी
2: आपकी आमद का, ये भी बहुत खूबसूरत इंतखाब था आपका, और आपका तोहफा लेकर हाजिर हूँ, इसे कबूल फरमाइए।
1: मेहरबानी की, शुक्रिया आपका।
2: बहुत शुक्रिया।

0: اور دوستو بڑھتے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب. کمرشل کے بعد انشاءاللہ ہم مانچسٹر کے صنعتی شہر میں لیے چلیں گے, جہاں موجود ہیں ہمارے محترم چودھری رخسار احمد صاحب, ان کا تحفہ ان کی نظر کریں گے. چودھری صاحب, میں معذرت خواہ ہوں کہ باوجود مجھے آف کر کے آن کرنا پڑا, اس وجہ سے آپ سے مزید بات نہ ہو پائی. لیپ ٹاپ, دی بیسٹ ایشین میوزک آن لائن.
1: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज.
10: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो.
11: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले.
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं.
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई. जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है.
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार.
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज.
12: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG. फोन 01274 477 2577. दुबई ज्वेलर्स.
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर. होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक. आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे. फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले. बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से. बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL. बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी.
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है.
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा. मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं. मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे.
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR. टेलीफोन 07885 428 3499. अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: और दोस्तों, हसब वादा हम आपको लिए चल रहे हैं मैनचेस्टर के सनती शहर में, जहां हमारे मोहतरम चौधरी रुखसार अहमद साहब मौजूद हैं, और एक खूबसूरत शेर उनकी नज़र कर रहा हूं कि जैसे तुम्हें हमने चाहा है कौन भला यूं चाहेगा, जैसे तुम्हें हमने चाहा है कौन भला यूं चाहेगा, माना और बहुत आएंगे तुमसे प्यार जताने लोग। और दोस्तों, अभी अभी हमारी बज में शामिल हुए हैं हमारे मोहतरम लिसनर जनाब आबिद साहब, ब्रैडफोर्ड की इस हसीन वादी से, और मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहे हैं, और मेरी पसंद का वो गीत सुनना चाहते हैं खान साहब, मेहंदी हसन खान साहब की आवाज़ में, ज़रूर सर आँखों पर। और आइए चलते हैं मैनचेस्टर, चौधरी रुखसार अहमद साहब, आपकी इन मोहब्बतों और इनायात का बहुत शुक्रिया।

दोस्तों, ये थी हमारे आबिद भाई आपके लिए हमारी पेशकश, हमारी पसंद, आपकी मोहब्बतों, चाहतों और प्यार के नाम। अब हम आपको लिए चल रहे हैं डोनकास्टर सिटी, जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम जनाबे सिराज मुनीर साहब और उनका मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामईन व नाज़रीन की खिदमत में। अहले डोनकास्टर को मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। आपका तोहफ़ा लेकर हाजिर हैं, कबूल फरमाइए।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, मैं हूं रिफत अब्बास। आदाब उन तमाम अहबाब की खिदमत में जिन्होंने अभी अभी प्रोग्राम सुनना शुरू किया है। गजल उसने छेड़ी अपनी इख्तितामी घंटे में दाखिल हो चुका है। दो नए मेहमान हमारे हमराह मौजूद हैं, शहरयार साहब नॉर्थ हॉल लंदन से अपने अहल खाना के हमराह बज में मौजूद हैं, रफाकत साहब एडिनबरा से अपने अहल खाना के साथ मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की हसीन वादी में। दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और आज की इस बज़्म की इज्जत तौकीर बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से अपने आज की इस महफिल गज़ल उसने छेड़ी की जीनत बनाएंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677। नंबर एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ, 01274306677। कमर्शियल के वक्फे के बाद हम पेश करेंगे रफाकत साहब आपका और आपके अहल खाना का तोहफा, आपकी मोहब्बत और चाहत और प्यार के नाम, जिस मोहब्बत से आप एडिनबरा से तशरीफ लाकर हमारे प्रोग्राम की जीनत बढ़ाते हैं, उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। मुलाकात होती है कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद।

0: to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चल। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की।

0: नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
1: सोफी ज्वेलर्स?
0: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम। लेडी स्टाफ
1: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD9 4QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स,
2: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
7: और आइए दोस्तों, अब चलते हैं आपको लेकर एडिनबरा, जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम लिसनर रफाकत साहब। आपकी आमद और आपके अहल खाना की हमारे प्रोग्राम में शिरकत हमारे लिए बायस मुसर्रत है। आपका तोहफा लेकर हाजिर हैं। उसके बाद नॉर्थ हॉल लंदन चलेंगे और खूबसूरत गज़ल जिसे सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है जनाब शहरयार साहब ने, उनकी नज़र करेंगे। चलते हैं एडिनबरा।

दोस्तों अब हम आपको लिए चल रहे हैं नॉर्थ हॉल्ट लंदन, जहां शहरयार साहब अपने अहल खाना के हमराह मौजूद हैं और सुनना चाहते हैं ये खूबसूरत गज़ल। और कह रहे थे कि खूबसूरत सा शेर भी पढ़ दीजिएगा। हज़रत उबैदुल्ला अली मरहूम का ये खूबसूरत शेर आपकी मोहब्बतों के नाम है कि ख्याल व ख्वाब हुई हैं मोहब्बतें कैसी, ख्याल व ख्वाब हुई हैं मोहब्बतें कैसी, लहू में नाच रही हैं ये वहशतें कैसी। आपकी आमद का शहरयार भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि हम आपका तोहफा आपकी नज़र करें, खुश आमदीद कहना चाहेंगे हमारे मोहतरम लिसनर AD चौधरी साहब को, जो अब मोटरवे M62 पर पहुंचने वाले हैं। इंशाल्लाह आपके तोहफे के बाद हम इनका तोहफा लेकर हाजिर रहेंगे। चलते हैं नॉर्थ हॉल्ट लंदन। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया शहरयार भाई।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, जो अपने इख्तितामी लम्हात में दाखिल हो चुका है।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274

Manuel, ¿qué tal está?

Thank you.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुज़ाफ़ात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online.
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hill.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: You're listening to Bradford Asian Radio,
4: 1413 AM and online.
3: You're listening to Bradford Asian Radio,
4: 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3499, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी लाइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 एएम ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grant Road, Bradford 7, 414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414-260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन।

0: रेडियो
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुज़ाफ़ात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
11: ओपन 7 days 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
10: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
15: जी लिस्नर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जनाब मोहम्मद अली दुरानी, और आज जो तकरीब थी जिसमें डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान जनाब तारिक इमाम के हवाले जो सीडी गई थी, जो लॉन्च की गई सीडी जिसमें इकबाल का कलाम है, इसका टाइटल अपना मुकाम पैदा कर, इसके हवाले से हम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
16: वालेकुम सलाम।
15: जी सर, इस सीडी के हवाले से और आज जो तकरीब थी, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
16: हाँ जी, वो कल जैसे 9 नवंबर है और इकबाल डे के रेफरेंस से आज सीडी को जारी किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जो कलाम है उसको नौजवानों तक, इकबाल की सोच को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है वो बहुत अरसे बाद कलाम इकबाल को दोबारा जो है एक नए के साथ जो है पेश किया गया है और एक नए अपोजिशन के साथ पेश किया गया है। मैं समझता हूँ ये एक डेवलपमेंट है, इंशाल्लाह ये काफी जारी रहेगा।
15: हम सर से उनका पैगाम लेंगे कल हजरत अल्लामा इकबाल का योम पैदाइश है, उस हवाले से। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
16: मैं समझता हूँ कि जी कल के दिन की अहमियत जो है वो इस जाहिर होती है कि कल उस शख्सियत का योम पैदाइश है

0: Us.
1: Bradford Asian Radio, medium wave 1413 AM, Bradford Asian Radio.
2: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
0: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
0: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
12: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
13: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
12: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
13: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
12: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
12: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
4: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
3: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
4: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
3: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
4: 07548419678।
3: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
5: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to Bradford Asian Radio,
9: 1413 AM and online।
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Radford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड 3

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट में।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.